0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: चांदनी

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
2: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

जितनी भी लड़कियां इस वक्त मुझे सुन रही हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगी कि सोई सोई आंखों पे काजल, मस्कारा, लाइनर लगाना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब लड़के जो है वो समझ पाएंगे कि क्यों लड़कियां जो है वो घर पे ये सब ना करके कार में करती हैं कहीं भी पहुंचने से पहले। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हो एंड सुबह बेसिकली ऑफिस जा रहे हो या किसी भी जगह के लिए निकले हो, तो सुबह सुबह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आंखें इतनी फूली हुई होती है, इतनी स्वेल होती है कि उस पर लाइनर मस्कारा लगना कितना मुश्किल हो जाता है। आई नो ब्यूटी टिप के साथ जो है दिन की शुरुआत करना, सुबह की आपकी शुरुआत करना ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, गुड मॉर्निंग जो है वो तो आपको बोलना ही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपकी कसर संशु, आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूं, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैं अपने इन नाजुक कंधों पर उठा चुकी हूं। सो आपकी मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाएंगे, एंटरटेनिंग बनाएंगे एंड बहुत सारे अमेजिंग वाले गाने भी आपको सुनाएंगे। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। फिलहाल कॉकटेल 2 मूवी से बंधु 2.0 गाने के साथ जो है हम आपकी मॉर्निंग की शुरुआत आपसे करा रहे हैं। थोड़ी सी देर में जो है आगे आपको इस मौसम के मामले के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगी कि क्या हो रहा है एंड फिलहाल जो है आप अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करो एंड मुझे जल्दी से मैसेज कर दो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, या फिर कब उठे, कैसा जा रही है मॉर्निंग, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एंजॉय कीजिए गाना, मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। एंड अर्जिया तो देखो मैं काफी टाइम से कर रही थी कि इस गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा जो है वो मुझे मिलना चाहिए। हाँ जी आपकी कशिश हूँ मैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है मैं बिंदास बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड देखिए मेरी इतनी अर्जियाँ करने के बाद, इतनी दुआएं दिल से मांगने के बाद, इतना मैनिफेस्ट करने के बाद, फाइनली ऐसा लग रहा है कि यार देखो मौसम बदल रहा है। हाँ जी मोस्टली क्लाउडी रहने वाला है आज का मौसम। एंड अगर मैं बात करूँ तो 30 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है दोहा में, एंड यही आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है। लेकिन द कैच इज इन द हाईएस्ट टेम्परेचर, बिकॉज 37 डिग्री सेल्सियस आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है। तो कंपेरेटिवली जैसे कल तक जो है वो 39 डिग्री था, 40 डिग्री सेल्सियस था, अब वो जो है 37 डिग्री पे आ गया है, एंड ये मुझे अच्छा सा लग रहा है। फिलहाल देखिए जितनी भी चीजें मैंने मौसम को कही हैं उन सब के लिए सॉरी बोलते हुए सॉरी सॉन्ग जो है मैं प्ले करना चाहती हूँ। सो नेहा कक्कड़ की आवाज में जो है सॉरी सॉन्ग आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए। इस मौसम से मेरी अपोलॉजी जो है वो एक्सेप्ट करवा लीजिए। आप जब तक जो है हाय हेलो गुड मॉर्निंग मुझे भेज सकते हैं ताकि मेरा जो है दिन बन जाए। स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

ऑफकोर्स मेरे बिना आपको ज्यादा देर जो है बितानी ना पड़े, बस इसका मैं ख्याल रख कर चल रही हूँ। आपकी कशिश मेरा नाम है एंड शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। हाँ जी, आपकी कशिश यहाँ पर आ चुकी है बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर, एंड बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं। एंड अब ऐसा लगता है कि इन लोगों के मैसेजेस के बिना ना मेरी तो गुड मॉर्निंग हो ही नहीं सकती। सो अस्मा जी ने गुड मॉर्निंग कहा है, गुड मॉर्निंग अस्मा जी। जुल्फी जी ने जो है गुड मॉर्निंग लिखा है और लिखा है, ओनली दोज हु बैलेंस हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क कैन अचीव ट्रू सक्सेस। थैंक यू सो मच, आज सुबह का मॉर्निंग वाला मोटिवेशन मुझे मिल चुका है। अब रार जी ने भी एक बहुत ही प्यारी सी फोटो जो है वो हमें भेजी है चाय के कप के साथ। देखो यार, मैं ना सोच रही थी कि चाय छोड़ू, लेकिन अब जब जो है चाय की इतनी फोटोज मेरे पास आ जाती है तो फिर मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच। शशिकांत पाटिल जी ने भी जो है एक बहुत ही प्यारा सा कोट भेजा है, डोंट फाइंड faults, that's very easy and almost anybody can do it. Find remedies, that's need intelligence and very few chosen ones can do it. Good morning. Thank you so much Ashikant ji, बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। उसके बाद हम जो है संधू जी का मैसेज पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग एवरी वन, विशिंग यू अ हैप्पी डे फिल्ड विद स्माइल्स एंड ब्यूटिफुल मोमेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे। हरपाल संधू फ्रॉम दुकान, थैंक यू सो मच हरपाल जी, केड़ो हाल। उसके बाद निजामुल्ला जी ने भी जो है हमें गुड मॉर्निंग कहा, सो गुड मॉर्निंग। एंड जीशान जी ने भी जो है हमें, जीशान जी ने रात में जो है हमें फोटो भेजी थी, सो थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के मैसेजेस जो है वो पढ़ के। लेकिन अगर आप लोग मुझे एक फेवर कर दें तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। आपको पता है ना क्या है कि ये जो स्टूडियो है जहाँ मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर एक भी खिड़की नहीं है। एंड अभी जो मैं बाहर बादल देखकर आ गई हूँ तो मुझे जो है और बादलों को देखने का मन हो रहा है। तो क्यों ना आप लोग मेरी आंखें बने एंड मुझे जो है अपने फ़ोन से एक प्यारी सी आसमान की, नीले आसमान की, सुर्ख आसमान की फ़ोटो खींच के भेजे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते, इतने तो हम अच्छे दोस्त बन ही चुके हैं यार। देखो ना, 3311063 इज द नंबर। जल्दी से जो है आप मुझे एक प्यारी सी फोटो जो है भेज दीजिए। एंड अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, अगर आप पार्किंग में खड़े हैं या आपकी गाड़ी जो है सिग्नल पे खड़ी है तो प्लीज मुझे प्यारी सी फोटो जो है वो भेज दीजिएगा। फिलहाल जर्नल 2 मूवी से एक अमेजिंग वाला क्यूट सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: अनपॉपुलर ओपिनियन, ये जो चलते चलते वाली मूवी है ना मोहब्बत है, ये मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई है। मतलब मैं शाहरुख खान की बहुत बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ना मोहब्बत मूवी में अब जो है, जब मैंने उसे लाइक फॉर द 18th और 19th टाइम देखा अभी रिसेंटली बैठकर, तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या बनाया है ये। हाँ जी, आपकी कुछ ही छोरी आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, अगर मैं मोहब्बत मूवी की बात करूँ ना, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है इस मूवी में। रोमांस ऑन पॉइंट है, गाने ऑन पॉइंट है, फेस कार ऑन पॉइंट है, यानी सभी लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा जो है ना ड्रेसिंग सबकी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ना ये लोग टाइमलाइन नहीं समझा पा रहे मुझे। मतलब वैलेंटाइन डे से जो है शुरू होती है हमारी कहानी, एंड उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, कहाँ पहुँच जाती है, कब सर्दी आ रही है, कब गर्मी आ रही है, कब बारिश हो रही है, अचानक से समझ ही नहीं आता। तो मेरे लिए तो ये थोड़ी सी जो है लॉजिक से देखी जाने वाली मूवी नहीं है। बाकी लॉजिक के साथ जो देखा जा सकता है वो है आप सबकी प्यारी प्यारी फोटो जो आपने मुझे भेजी है। सो इदरीस जी ने जो है वो हमें सबसे पहले जो है फोटो भेजी हुई है, एंड बहुत ही खूबसूरत फोटोज भेजी हुई हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, मुझे एक गुलदस्ता दिख रहा है फ्लावर्स का, एंड और मुझे दिख रहा है अमेजिंग वाले येलो कलर के बादल। थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद इलीस जी ने भी जो है बहुत प्यारी सी फोटो भेजी है, शायद वो सिग्नल पर रुके थे तब की है। संधु जी ने जो है वो भी हमें बहुत ही अमेजिंग वाली फोटो भेजी है, एंड थैंक यू सो मच संधु जी, एकदम बढ़िया फोटो है यार ये तो। एंड ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग फोटोज भेजी है। ओहो हो हो, मनोज जी की फोटो जो है जस्ट अभी अभी आई है, एंड अरे वाह मनोज जी, ये तो सच में आपने एकदम वॉलपेपर वर्दी फोटो भेजी है मुझे। सो चलिए, अब अगला वॉलपेपर मुझे मिल गया है मेरे फोन पे लगाने के लिए, थैंक यू सो मच। कल फिर से आप लोगों से इल्तिजा करूंगी कि मुझे जरा सुर्ख आसमान की फोटोज जो है वो भेज दीजिए। फिलहाल आपको जो है एक अमेजिंग वाला गाना मैं सुना देती हूँ, बेबी डू डाई डू जो है मूवी का नाम है, इश्क कमीना 2.0 गाने का नाम है, ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर है। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास
1: रेडियो।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
3: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

यार ये गाना ऐसा है ना कि इसपे अपने आप ही गाना जैसे चलना शुरू होता है, मुझे एकदम यू नो मेन कैरेक्टर वाइब आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि बस अभी उठूं और मैं बाहर जाकर जो है किसी अच्छी लोकेशन पे अपनी जो है ऐसे मस्त शॉट्स लूं और फिर उसको एडिट करके इस गाने पे डाल दूं। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, आज जो है मैं आपसे बड़ा ही इजी सवाल पूछने वाली हूँ, और ये जो सवाल है इस सवाल से जुड़ी हुई है एक अपडेट। सो आपने मियां बाजार के बारे में तो सुना ही होगा, सो बस मुझे ये जो है आज आप बता दीजिए कि मियां बाजार जो है वो कौन सी लोकेशन पर जो है होता है, बस। एंड देखिए, नाम में ही आंसर है, आंसर में ही नाम है, इससे ज्यादा हिंट मैं दूंगी नहीं। 3311063 इज नंबर, जल्दी से अपनी नॉलेज जो है, क्योंकि अगर आप कतर में इतने टाइम से रह रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा, और अगर आप नए नए आए हैं कतर में तो आज जो है ट्यून इन करके रहिए, आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि मियां बाजार वो पहली जगह थी जहां मैं कतर में गई थी, एंड मुझे अभी भी याद है फेब्रुवरी में जो है 13th या 12th ऑफ फेब्रुवरी की ये बात है, मैं मियां बाजार गई थी एंड मुझे बहुत मजा आया था। सो ये जो है कहां पर होता है, किस जगह पर, वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या है, वो मुझे बताइए कि हर साल ये कहां पर होता है, हर मतलब सीजन में कहां पर होता है। 3311063 इज नंबर। फिलहाल टॉक्सिक मूवी से तबाही गाना विशाल मिश्रा की आवाज में आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए और जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। इसमें आपका 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या कशिश से स्मार्ट होने का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी जो है कतर की नॉलेज जो है वो मैं टेस्ट कर रही हूँ। सो जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाकर गाना एंजॉय कीजिए और मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं हूँ आपकी कशिश। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हाईवे मूवी से एकदम ही मोटिवेट कर देने वाला गाना पटाखा गुड्डी आपके रेडियो सेट्स पर आया एंड वॉल्यूम बढ़ाकर आपने एंजॉय भी किया आपकी कशिश के साथ। ये छोरी कशिश जी, मैं हूँ आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश एंड आपकी मॉर्निंग को, आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, आज के सवाल में मैंने बड़ा ही इजी सा सवाल पूछा था कि यार मुझे बस ये बताओ कि ये जो मियाँ बाजार है कतर में जो होता है वो कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन क्या है। और मैंने हिंट भी दिया था कि नाम में ही आंसर है, आंसर में ही नाम है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी के साथ मैंने जो है अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि आज जो है 13 अक्टूबर है एंड 13 फरवरी को मुझे याद है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं जो है कुछ और ख़रीदने के लिए निकली थी, हमारा एक इवेंट था एंड हम आप सब ने भी उस इवेंट में मुझे ज्वाइन किया था और मेरा पहला इवेंट था वो, एंड उसकी कुछ शॉपिंग के लिए मैं बाहर निकली थी एंड तभी मुझे दिखा कि अरे ये ग्रीनरी के बीच में ऐसे स्टॉल्स क्यों लगे हैं, ये क्या है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ ये तो मियाँ बाजार है एंड तब मैंने जाके वहाँ से शॉपिंग की थी एंड मुझे तब कतर में आए हुए कुछ 12-13 दिन ही हुए थे, सो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था क्योंकि पहली बार मैंने जो है कतर में शॉपिंग अगर कहीं से की थी तो मियाँ बाजार से की थी। अब देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वैसे अगर आप लोग भी अभी तक आंसर देना चाहते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं 3311063 पर मुझे मैसेज करके। एंड बाकी मैं अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ, मैं लोकेशन अभी रिवील नहीं कर रही हूँ। तो संतोष जी ने अभी अभी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अवीस खान जी ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। और उसके बाद इंसान अहमद जी ने भी जो है बिल्कुल सही आंसर दिया और लोकेशन भी भेजी है शायद। और रेवा जी ने कहा है हाय आरजे कशिश गुड मॉर्निंग, आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, मैं आंसर नहीं दूंगी। ओके मैं ना ऐसे फ्लो फ्लो में आंसर देने वाली थी। उसके बाद हमें एक और मैसेज आया है अब्दुल्ला जी से, उन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड उन्होंने डेट भी बताई है, ये वाली अपडेट मैं थोड़ी देर बाद देने वाली थी वैसे। एंड रहमान जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, पूजा जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया था, सो थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद इदरीस जी ने भी जो है वो आंसर दिया है बिल्कुल सही, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर आंसरिंग। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, थोड़ी देर बाद हम जो है आंसर रिवील करेंगे एंड आपको बताएंगे कि मियाँ पाक जो है वो कब से आ रहा है वापस। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो। फिलहाल ज़बरदस्त हिट गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर धमाल फोर से ये गाना भी इंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो

हाँ जी, तो फिर सही आंसर सुनने के लिए तैयार हैं? वैसे तो जितने भी लोगों ने मुझे आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, तो कंग्रेचुलेशंस आप सबको। लेकिन एक बार देख लेते किसी ने आंसर दिया है बाद में। तो हाँ जी, मैं हूँ आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश, एंड आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बिना एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। एंड बानी जी ने, सुमैया जी ने एंड इद्रीस जी ने तो हमें पहले आंसर दे दिया था, एंड संतोष जी ने जो है बिल्कुल सही सही आंसर हमें दे दिया है। एंड सुमैया जी का कहना है कि नियर कतर म्यूजियम इन कॉर्निश, हाँ जी, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स जो है वो हमारा सही आंसर है। सो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि मियां बाजार जो है वो कहाँ पर लगता है, तो आंसर है मियां पार्क में, यानी म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स के पास में। सो थैंक यू सो मच। एंड अपडेट जो थी वो यही थी कि इस 30 अक्टूबर से जो है वो मियां बाजार जो है वो शुरू हो रहा है। एंड मैंने जैसे आपको बताया था कि यार मैं जब पहली बार आई थी तो सबसे पहले मैंने कतर में शॉपिंग अगर कहीं से की थी तो वो यहीं से की थी। सो बाकी जो है ऐसे ही अपनी एक्सपीरियंसेस जो है कतर के बारे में शेयर करती रहूंगी आपसे। आप वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय करते रहिए। फिलहाल ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

यार देखो ये गाने में तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, माय दिल गोज ये, और लिखा भी ऐसे MMMM करके, लेकिन जब मुझे कोई चैट पर ये MMM करके भेजता है कि हाँ UMMM, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ जी मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आज की हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है मैं बिंदास बनाने की जो है कोशिश कर रही हूँ, एंड मेरी जो मॉर्निंग है वो बिंदास नहीं बन पा रही है। यार देखो मैं जो है अपनी एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी जो है अभी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो हुआ ये कि जनरली मैं जो है खाना खा रही थी, एंड पता नहीं कैसे चम्मच जो है जब मैं खा रही थी सो वो मेरे दांत पे लग गया अंदर, ओके अंदर मेरे दांत के अंदर साइड, एंड मेरे दांत में पता नहीं कैसा सा स्क्रैच आया है या क्या हो गया है, दांत टूट गया है शायद। अब वो जितनी बार मेरी जबान उस दांत को टच कर रही है ना, मुझे उतनी बार एक तो दांत में दर्द हो रहा है, और उसके बाद मेरी जो जबान है वो पिछले कितने 18-20 घंटों में जो है पूरी तरह छिल चुकी है। सो मुझे बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं जब भी मैं ऐसे बोल रही हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों मेरी जबान जो है वो दांत पर टच हो रही है तो ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी ऐसी पता नहीं यार मैं क्या। और देखो यार अगर मेरा कोई नॉर्मल डेस्क जॉब होता ना तो मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। देखो अभी क्या हुआ, सो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन ये है और मुझे बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है। आप लोगों को भी जो है समझ आ रहा होगा कि कशिश ऐसे क्यों बात कर रही है, इसे किसने आरजे बना दिया, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो। सो देखो गाइस ये मेरी गलती नहीं है, एक्चुअल में जो है मेरा दांत टूट गया है, एंड उस वजह से शायद हवा बाहर आ रही है मेरे बोलने पर, तो जो है मुझे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, एंड ये सेम टाइम पे काफी फनी भी है। सो यार आप जो है अपना सपोर्ट अपना प्यार मुझे भेज दीजिए और बोल दीजिए मेरा दिल रखने के लिए, कशिश इतने बुरी साउंड नहीं आ रहा, इतना बुरा साउंड नहीं कर रही हो आप, और जब तक आप जो है अमेजिंग वाला गाना लाल लाल कलरची बांगड़ी गाना जो है संजू राठौड़ की आवाज़ में एंजॉय कर सकते हो, तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ही गाना एंजॉय करो, और मुझे जो है मन बहलाने के लिए सही, लेकिन ये कह दो कि कशिश यार देखो मज़ा तो आ रहा है आपके साथ, कोई बात नहीं। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
2: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cash back. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

किसी को अगर उर्दू अच्छे से आती है एक बार प्लीज मुझे मुर्शिद का करेक्ट मतलब बताओगे, क्योंकि जितने लोगों से पूछती हूँ उतने लोग जो है अलग अलग मतलब बताने लग जाते हैं। हाँ जी, कूल है ये छोरी आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है मैं बिंदास बना रही हूँ। अब देखो यार, मैं आपसे जो है एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि क्या होता है ना कि लड़कियों को सबको ऐसा लगता है कि लड़कियों को क्या चाहिए, लड़कियाँ शॉपिंग करना चाहती हैं, लड़कियाँ जो है वो मेकअप चाहती हैं, लड़कियाँ अच्छे अच्छे कपड़े चाहती हैं, लड़कियाँ पैसा गाड़ी महंगा घर चाहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ जो है वो इम्यूनिटी चाहती हैं। आपको नहीं लगता कि आप मतलब मुझे बताइए कि अगर आप लड़की है तो आप मुझसे रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर आप लड़के हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई लेडीज तो होगी ही ना, सो उन लेडीज से क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? कि लड़कियों की इम्यूनिटी काफी कम होती है भाई, मतलब ये कितना भी अच्छा खा लें, ये कितना भी हेल्दी हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनको होता रहता है। कभी बुखार हो जाएगा, बुखार जो है वो ठीक होगा तो इनके पेट में दर्द होने लग जाएगा, पेट दर्द ठीक होगा तो हमारा पैर दुखने लग जाता है, पैर ठीक होता है तो फिर सर दुखने लग जाता है, और कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो हेयर फॉल तो देखो हो ही रहा होगा। सो हम लड़कियों के जीवन में, लाइफ में करियर के टेंशन के अलावा, फैमिली की टेंशन के अलावा, एक ये टेंशन भी होती है कि हमारी बॉडी इज नॉट बॉडीइंग। हमारी बॉडी में रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है चाहे हम कितनी भी केयर कर लें। एंड ये कोई ना डिमीनिंग बात नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, मैं सच में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में ना सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत दिनों से ना मुझे बुखार आया था, मेरा गला ठीक होने लग गया था, फाइनली मैं जो है हेल्दी फील कर रही थी, एंड तभी रैंडमली मेरा दांत टूट गया। तो कुछ ना कुछ लड़कियों के जीवन में ऐसा होता रहता है कि यार कभी चलते चलते जो है कट लग जाएगा, चलते चलते हम टेबल से टकरा जाएंगे, तो हम क्लमजी नहीं है, लेकिन पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है जिसके बाद ऐसा लगता है कि भाई ये हर वक्त कुछ ना कुछ जीवन में दर्द क्यों है हमें। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो एक बार बस यस प्यार से जो है मुझे भेज दीजिए 3311063 पर। फिलहाल टॉक्सिक मूवी का मदहोश आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। थोड़ी देर बाद आपको ऑलिव अपडेट्स में जितनी भी अपडेट्स आपके लिए जरूरी है वो सब मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: बिल्कुल जी, ख्याल ये है कि पता नहीं कैसे एक चीज से दूसरी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में जो है रिलेट हो जाती है। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि किस तरीके से मेरा दांत टूट गया, उसके बाद मैंने बात की थी कि किस तरीके से लड़कियां जो है वो इम्यून नहीं हो पा रही हैं एंड इनको कुछ ना कुछ जो है दर्द होता ही रहता है जीवन में, एंड उसमें बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारी फीमेल्स ने मुझे यस यस यस यस यस यस लिखा है। एंड अब जो है एक इसी से जुड़ी हुई खबर जो है वो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ। सो मैं हूँ आपकी कशिश,
1: ये छोरी
0: हाँ जी, आपकी कूसी छोरी आपकी कशिश लेकर आ गई यहाँ पर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखो यार, अगर मैं बात करूँ ना हेल्थ अवेयरनेस की, सो कतर जो है वक्त वक्त पे हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो करता रहता है। सो इसकी प्रिपरेशन जो है वो फिर से शुरू हो गई है। अब जैसे ही ये जो वेदर है, जो सीजन है, ये शिफ्ट हो रहा है, हम सब बीमार पड़ रहे। मेरे ऑफिस में ही मैं एक बार छींकती हूँ और मुझे लाइन से जो है छह लोगों के छींके जो है वो सुनाई दे जाती है। सो वायरल जो है वो इस सीजन में है एंड काफी सारे लोग जो है वो अब देखो मेरे साथ ही हो रहा है, बदलते मौसम के साथ जो है काफी बीमार भी पड़ रहे हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन दैट इज PHCC ने अग्रेसिवली जो है एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है पब्लिक अवेयरनेस जो है एंड वैक्सीन कैंपेन को। यानी आप अगर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं जो नहीं लगी है अभी तक, सो वो आप जाकर लगा सकते हैं अक्रॉस ऑल लोकल क्लिनिक्स। सो इस पे काफ़ी फोकस कर रही है इस वक्त हमारी मिनिस्ट्री, एंड आप लोगों को भी अपना काफ़ी ध्यान रखना है। हेल्दी खाइए, हेल्दी जिए, जिए नहीं बोल सकते, हेल्दी जीवन जिए, एंड आपकी कशिश के साथ जो अमेजिंग गाने एंजॉय करते रहिए। सो फिलहाल अली सफर की आवाज में बहुत ही क्यूट वाला ट्रैक जो है आपके रेडियो सेट पर जरा वॉल्यूम बढ़ाकर सुन रहे सजनिया तेरे संग दुनिया, ये वाला गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
4: Awesome. Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Let's dance.
5: Oh yeah.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो।
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
2: यस।
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास मॉर्निंग,
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
5: In association with
6: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: कुछ ज्यादा ही इमोशनल गाना नहीं है, मतलब कुछ दुख नहीं है जीवन में, लेकिन फिर भी ये गाना सुन के ऐसा लगता है कि यार इमोशनल है, तो मैं एक काम करती हूँ, रिलेट कर जाती हूँ। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश यहाँ पर आ चुकी है। एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है मैं देना चाहती हूँ। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऑफिशियली जो है एप्लीकेशंस ओपन कर दिए हैं फॉर टेम्पररी लाइसेंस फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स ऑपरेटिंग एट द सी लाइन रीजन गियरिंग अप फॉर द अपकमिंग विंटर सीजन डेजर्ट कैंपिंग सीजन। सो सी लाइन कमर्शियल लाइसेंसिंग जो है वो बिल्कुल शुरू हो गई है। सो देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो आपको जानना इम्पोर्टेंट था, बाकी हर अपडेट के लिए हम तो है ही आपको बताने के लिए। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, थोड़ी सी देर में एंटरटेनमेंट की बात होने वाली है। सो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहना, और फिलहाल अमेजिंग वाला गाना जो है ऑलिफर सॉन्ग ऑफ द ईयर एंजॉय करो, और कहते रहो जी ओपन दैट
1: रेडियो ऑलिफ पर। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर,
2: ये गाना

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
3: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

पहले ना मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक गाना है, लेकिन जब आप लिरिक्स को समझने लग जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब जैसे यार इस गाने में पपा ने कहा है ना कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। यानी कभी कभी यार कुछ रिश्तों का जो है स्वाद तभी आता है, कुछ रिश्तों की वैल्यू हमें तभी पता चलती है जब आप उनसे थोड़ा सा दूर रहते हो। जैसे मुझे जो है मेरे घर की याद, जो मैं अपने घर पर रहती थी तो मैं बहुत कम घर पर रहती थी, मैं ज़्यादातर बाहर रहना पसंद करती थी, लेकिन जब से मैं कतर आई हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बस एक हफ्ते के लिए मुझे घर जाने को मिल जाए, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। सो जब आप जो है किसी के साथ रहते हो ना, तो उसको शायद उतनी वैल्यू आपकी होती नहीं है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा दूर आते हो तो आप भी चाहते हो कि सामने वाले को आपकी कमी महसूस हो, जिस तरीके से खाने में नमक ना होना जो है बहुत नमक की कमी जो है वो महसूस कराता है। ठीक है, ऐसे इमोशनल बात की बात जो है जरा एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। सो सैफ अली खान जी ने जो है फाइनली इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, सेलिब्रिटीज के बीच में जो है ना एक ये चल रहा था कि यार रणबीर कपूर जो है वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, सैफ अली खान इंस्टाग्राम पे नहीं है, लेकिन ये ऐसे लोग थे जिनके बहुत सारे फैन पेजेस ऑलरेडी बने हुए थे, तो पूरी अपडेट्स उस पर जा रही थी। एंड फाइनली जेंजी से पहले भी जो इंसान जेंजी था उसने जो है अब सोशल मीडिया ज्वाइन कर लिया है, तो फिर देखिए क्या फन कंटेंट आएगा। सो सैफ अली खान ने फाइनली इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने पोस्टिंग शुरू कर दी है। सो काफ़ी लोगों ने जो है इस पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, ओहो वी आर वेटिंग फॉर यू, हमें तो बस आपका इंतजार था। एंड कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से इस ज़माने में कोई मिलता है जो सोशल मीडिया पर ना हो, आपने अपनी पीस जो है वो अपने हाथों से क्यों ख़राब करी। आपको क्या लगता है कि यार इंस्टाग्राम जो है वो पीस वाली जो चीज़ है वो है, या फिर ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देने वाली चीज़ है? मैं तो यार अगर इंस्टाग्राम देखूँ तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है, अगर ना देखूँ तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि क्या हो गया होगा मेरे बिना। फिलहाल जो है मुसाफिर कैफे से काफ़ी है गाना जो है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जी बिंदास।

0: जाना न जाना ऐसे ही करके आपको मनाना पड़ेगा आपकी जाना को, अगर उन्होंने ये वाली बात जो है वो पकड़ ली तो। एक बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाली हूँ मैं आपको। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। ओके, आवाज ठीक कर लेती हूँ ताकि आपको सब कुछ जो है एकदम क्लियरली बता सकूँ। तो देखो यार, आजकल जो है काफी सारे लोग अपने रिलेशनशिप एडवाइस के लिए जो है AI पर डिपेंडेंट हो गए हैं। सो एक वाइफ को भी ऐसे ही लगा कि यार मैं अपनी सारी रिलेशनशिप एडवाइस जो है वो अपनी AI से ले लेती हूँ, अपनी ChatGPT से पूछ लेती हूँ। लेकिन हुआ ये कि उनके हस्बैंड ने ऑलरेडी कस्टमाइज कर रखे थे रिस्पॉन्स। हाँ जी, सो उन्होंने जो है हस्बैंड ने पहले ही वाइफ के ChatGPT पे डाल के रखा था कि जब भी रिलेशनशिप से जुड़ा कोई भी सवाल आपसे किया जाए तो आपको हमेशा हस्बैंड की साइड लेनी है। इसीलिए जब भी जो वाइफ है वो ChatGPT पे कुछ भी सवाल पूछती थी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, भले ही अगर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो हमेशा ChatGPT जो है वो हस्बैंड की साइड लेने लग गया। देखिए जीनियस, लेकिन कितना बुरा है ये। इसीलिए जो है AI पे जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। AI भी जो है उन दोस्तों जैसे हो गए जो आपसे जलते हैं। AI भी उन बेवकूफ दोस्तों जैसे हो गए जो हमेशा आपको जो है नीचे खींचना चाहते हैं, डिमीन करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बढ़िया ना चले, या बायस होके जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब आप जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके पास इसीलिए नहीं जाते ना रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स लेकर, क्योंकि वो आप दोनों में से किसी एक की तरफ बायस होंगे तो आपको जो है एकदम न्यूट्रल आंसर नहीं दे पाएंगे। ChatGPT को इसीलिए तो चुना जाता था कि यार ये न्यूट्रल आंसर देता है, पर अब वो भी नहीं दे रहा। क्या बात है यार ये। फिलहाल जो है एक अमेजिंग डांस वाला गाना छम्मा छम्मा आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर जबरदस्त हिट गाना जो है एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
1: In association with
3: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

देखो बंदा तो बिंदास है, लेकिन ये बंदी जो है, जो आपके मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए आई है, इसको भी थोड़ा सा बिंदास कह दो ना यार, क्या चल जाएगा आपका। हाँ जी, आपकी कौन सी छोरी, आपकी कसूर जो है यहाँ पर आ चुकी है लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो आसमान को देखकर, बादलों को देखकर, तारों को देखकर ये कहते हो कि अरे वो देखो बादलों से जो है दिल बन गया, अरे वो देखो पत्तों में मुझे दिल का शेप दिख रहा है, ना आपको लोग कहते हैं कि यार आप तो पूरे टाइम प्यार में रहते हैं। सो सिर्फ आप ऐसे नहीं है, नासा को भी ऐसा ही कुछ दिखता है। सो नासा ने जो है अभी रिसेंटली नेबुला जो है वो स्पॉट किया है स्पेस में, यानी स्पेस में एक तारों का ऐसा झुंड है जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये तो दिल के शेप में बना हुआ है। एंड उसकी जो पिक्चर्स आई हैं, जो पिक्चर्स इंटरनेट पर सरफेस हो रही हैं, वो भी ये दिखाती हैं कि भाई सिर्फ एक दो इंसान को नहीं लगेगा कि यार ये तो दिल बना हुआ है, जनरली वो दिल की शेप में है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वेरी नाइस, वेरी वेरी वेरी नाइस, मतलब सबको ऐसा दिख रहा है तो बढ़िया है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आप हार्ट शेप जो हम ड्रॉ करते हैं, या हमारे स्टिकर में भी जो कीबोर्ड का स्टिकर होता है उसमें भी हार्ट शेप बना हुआ है, ये हार्ट शेप एक्चुअली हमारे ह्यूमन हार्ट की तरह तो नहीं दिखता है ना, लेकिन आप सोचेंगे फिर ये हार्ट वाला शेप आया कहाँ से। ये हार्ट शेप आया जब आप आर्टरीज और सारी वेन्स को मिलाकर एक शेप देखते हो, तो वो कहीं ऐसे जो है दिल वाला शेप जो है, हार्ट वाला शेप जो है वो बनाता है। इसीलिए हमारा ह्यूमन हार्ट जो एक फिस्ट जैसा दिखता है, वो इमोजीज में एंड हर जगह जो है हम ऐसे लगता है कि यार टू जो है एक उल्टा सी और एक सीधा सी जो है इसको मिक्स करके बनाया हुआ है हमने। सो देखा, अब आपने, आपको मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जो आपकी लाइफ में पता नहीं कब काम आएगी, लेकिन आएगी। वैसे अगर आप जो है वो थोड़े से रोमांटिक इंसान है, तो अगला गाना जो हमारा आ रहा है ये किसी अपने प्यारे इंसान को जो है आप डेडिकेट कीजिए और उनको बताइए कि देखिए आपके लिए जो है एक स्पेस में हमने दिल जैसा दिखने वाला नेबुला जो है वो ढूंढ के निकाला है और फोटो दिखाइए उनको। मैं हूँ आपकी कशिश, दे दना दन से मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक, रिश्ते नाते आ रहे आपके रेडियो सेट्स पर। वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक
0: पहला जादू।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

बस आते ही आप सारा जहां सारी दुनिया भूल से जाते हो, लेकिन ये मत भूलना कि अभी जाना पड़ेगा, तभी लौट कर कल वापस आ पाऊंगी। हाँ जी, वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का। हाँ जी, आपकी खुल सी छोरी आपकी कशिश हूँ मैं, एंड आपके लिए शो जो है बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई थी, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़न रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा था। अब देखो यार, दिन ऐसे ही जाते जाएंगे और ऐसे फिर से वीकेंड आ जाएगा एंड फिर हम अपना काम करने में जो है बिजी हो जाएंगे। लेकिन आज जो है मैं आपको जो है वीकेंड से इतना पहले याद इसलिए दिलाना चाहती हूँ कि आज घर जाते ही अपने काम जो है सारे निपटा लेना, क्योंकि अब सीजन में जो है वो परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स, बहुत सारी अलग अलग सेल जो है वो शुरू हो रही है एंड आपको इसका फायदा उठाना है, तो फिर जो है आपको अपने काम पहले ही निपटा के रखने पड़ेंगे। तो बस अपनी दोस्त अपनी बहन की तरफ से एक ये जो एडवाइस है ये रख लो, बाकी अमेजिंग वाले गाने आपके रेडियो सेट्स पर आते रहेंगे, ये एंजॉय करो। और जाते जाते वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि अपना ख्याल रखो, खाना खाते रहो, पानी पीते रहो एंड मुझे याद करते रहो, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, हाइड्रेशन का ध्यान रखना एंड सनस्क्रीन बिल्कुल लगाते रहना। अगला गाना जुगनी आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए एंड कल वापस सेम टाइम पर मैं आ जाऊँगी, तो मेरा इंतजार करना। बाकी टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक
3: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
4: Yes, Bebo.
3: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ
4: Yes.
3: कैच क्या है
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो
3: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
4: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और ये है लाइफ मस्त है. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे यार. सुबह की शुरुआत अगर बहुत अच्छे से हो जाए तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है. अगर सुबह थोड़ी सी खिटपिट या अजीब सी चीजें हो गई तो मान लीजिए कि अब पूरा दिन ही कुछ ना कुछ चलने वाला है. सो वेलकम टू लाइफ मस्त है, जहां दिन की शुरुआत होती है थोड़ी सी मस्ती, कुछ इंटरेस्टिंग बातें और ढेर सारी बातचीत के साथ. सो आप मुझे बताइए कि सुबह कैसी जा रही है आपकी. आप टाइम पर उठ गए थे या फिर अलार्म के साथ आज भी आपकी 5 मिनट वाली नेगोसिएशन चल रही थी. वैसे सुबह उठना भी एक आर्ट है. अलार्म बजता है और हम उसे बंद करते हैं और खुद से कहते हैं कि बस 5 मिनट और. फिर जब दोबारा आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो 5 मिनट कब 20 मिनट बन गए पता ही नहीं चला. लेकिन चलिए, जो हो गया सो हो गया. आज का दिन अभी हमारे सामने है और अच्छे से इसको निकालने का हमारा जो आज का मुद्दा है वो आज के शो में हम बात करने वाले हैं. AI की, बुक्स की, मूवीज की, इंटरनेट की और मजेदार ट्रेंड्स की और उन छोटी छोटी चीजों की जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं लेकिन डिस्कस नहीं करते. और आज की शुरुआत एक सिंपल से सवाल के साथ. जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ किस चीज की तरफ जाता है? फोन की तरफ, पानी के ग्लास की तरफ या सीधे चाय और कॉफी चाहिए आपको? मैं हूं मुस्कान, सुन रहे हैं आप लाइफ मस्त है रेडियो ऑल 106.3 FM पर. और आज की बातें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. सो फटाफट से अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए विद लॉट ऑफ ब्यूटीफुल ट्रैक्स. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: एक बात बताइए, जब नया साल शुरू होता है तो हम सबके पास एक लंबी सी लिस्ट होती है, इस साल फिट होना है, पैसे बचाने हैं, कोई नई स्किल सीखनी है, ज्यादा किताबें पढ़नी है और अपनी लाइफ को थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड बनाना है। लेकिन फिर धीरे धीरे जनवरी निकल जाता है, फरवरी निकल जाता है और पता नहीं चलता कि रेजोल्यूशन कहाँ गायब हो गया। अब तो अक्टूबर चल रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि साल के आखिरी कुछ महीने चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ नया शुरू करने के लिए देर हो चुकी है? मुझे तो लगता है कि हम जनवरी को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। हम सोचते हैं कि नई शुरुआत के लिए नया साल चाहिए, नई डायरी चाहिए, नए प्लानर्स चाहिए और कभी कभी तो नया जिम आउटफिट भी चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि किसी भी बदलाव के लिए कैलेंडर की परमिशन नहीं चाहिए। अगर आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है तो आज से शुरुआत हो सकती है। अगर आप हर महीने थोड़ी सेविंग करना चाहते हैं तो इस महीने से कर सकते हैं। और अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी जनवरी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात, एक हर अधूरे रिजोल्यूशन को फेलियर मत समझिए। हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटीज बदल गई हो सकता है कि उस समय आपके पास उतना टाइम नहीं हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। सो आज एक छोटा सा अक्टूबर रीसेट करते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि इस साल के बचे हुए टाइम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेटर करना चाहते हैं। सिर्फ एक चीज़ चुनिए, पूरी लाइफ को एक दिन में बदलने की कोशिश नहीं करनी है। अब मुझे बताइए कि अगर आपको 2026 खत्म होने से पहले अपनी लाइफ में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चेंज करना हो तो वो क्या होगा? हेल्थ, सेविंग्स, करियर, रिलेशनशिप या फिर खुद के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकालना? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास। नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
1: कूल रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

दोस्तों अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और एक ऐसे टॉपिक की जो कतर में रहने वाले हम सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आपने कभी सोचा है कि आजकल AI हमारी डेली लाइफ में कितनी जगह बना चुका है? कभी किसी से ईमेल लिखवाना हो, कभी किसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आसान लैंग्वेज में समझना हो, कभी ट्रैवल प्लान बनाना हो या फिर किसी नए आइडिया पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो, AI टूल्स अब इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के AI अडॉप्शन डेटा के अकॉर्डिंग 2026 की जो सेकेंड क्वार्टर था वो कतर की वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो AI अडॉप्शन का यू नो एवरेज है दैट इज 43.5%, जिससे कतर इस रैंकिंग में दुनिया के 10वें नंबर पर आता है। अब आप सोचिए कि मतलब हम AI यूज करने वाले पूरी कंट्री मतलब पूरे वर्ल्ड में ऑन 10th नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने लोग रोज AI इस्तेमाल करते हैं, ये एक अडॉप्शन डेटा है, ठीक है। अब जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक हम इंटरनेट पर सर्च करते थे और फिर अलग अलग वेबसाइट्स खोलकर ढूंढते थे कि भाई इसका क्या आंसर है। आज कई सारे लोग AI से सीधे सवाल पूछते हैं और फिर उसके जवाब को समझकर अपने काम में यूज करते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि AI से जवाब मिलना और जवाब का सही होना ये दोनों अलग बातें हैं। AI हमें आइडियाज दे सकता है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर सकता है, हेल्प कर सकता है और हमारा टाइम भी बचा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना भी उतना ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि अगर AI इतना कुछ कर सकता है तो आने वाले टाइम में इंसान की सबसे वैल्यूएबल स्किल क्या होगी? क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग या फिर कम्युनिकेशन या फिर सवाल पूछने की एबिलिटी? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, लेकिन एबिलिटी का यूज़ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू टेल मी कि AI का सबसे यूज़फुल जो काम है वो क्या है? और कोई ईमेल लिखने के लिए, कोई नई चीज़ सीखने के लिए या फिर यू नो कोई क्यूरियोसिटी अगर आपके मन में आती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपने अभी तक AI यूज़ नहीं किया है तो क्या आप उसे ट्राई करना चाहोगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: All that you need.

सो इमेजिन कीजिए कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक पोस्ट सामने आता है कि इटली में तिरामिसु खाने से एजिंग जो है वो 200% तक कम हो जाती है। कितना फनी लगता है ना पढ़ के। अब बताइए तिरामिसु पसंद करने वालों के लिए इससे अच्छी न्यूज क्या होगी, मतलब मिठाई भी खाइए और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है। सो बेसिकली किसी भी हेल्थ क्लेम को सही मानने से पहले कुछ बातें हमेशा चेक करनी चाहिए। रिसर्च किसने की, क्या किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई, एजिंग 200% कम होने का एक्चुअल मतलब क्या है और इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए रिलायबल एविडेंस क्या है। सो व्हेन आई वाज रीडिंग तो मैं ये पढ़ रही थी, मीम आ रहा था और मीम क्या ही बोलूं, मतलब इट वाज रिसर्च बाय समवन, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में ना कोई नंबर बड़ा दिखने का मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे बहुत ही बड़ा साइंस भी है। और सोशल मीडिया की इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार किसी पोस्ट में इतनी बड़ी हेडलाइन लिख देते कि हम डिटेल्स पढ़ने से पहले उस पर बिलीव कर लेते या फिर किसी दोस्त को फॉरवर्ड कर देते। सो तिरामिसु एक डिलीशियस इटालियन डेजर्ट तो है ही, लेकिन सिर्फ इस नंबर पे कि भाई इतना बड़ा नंबर मैंने किसी इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा तो एजिंग कम हो जाएगी और तिरामिसु खाना स्टार्ट कर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो अगली बार शॉकिंग हेल्थ टिप दिखे तो तुरंत शेयर करने की बजाय थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। और इंटरनेट पर हर इंटरेस्टिंग बात सच नहीं होती, हर कॉन्फिडेंट हेडलाइन जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं होती। सो ये सोचकर थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, फिर आपको और मजा आएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो आज बुक्स की बात ना थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आने वाला फ्यूचर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। हमने अभी AI अडॉप्शन की बात की थी थोड़ी देर पहले, लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ आज क्या कर सकती है ये जानना ही इंटरेस्टिंग नहीं है, ये समझना एक्सप्लेन करना जरूरी है कि आने वाले टाइम में AI हमारी लाइफ और वर्क को किस तरह से बदल सकता है। सो इस टॉपिक से जुड़ी एक बुक है, डिस्कशन करने से पहले टाइटल और ऑथर की डिटेल्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो किताब है ये AI इंटेलिजेंस और इंसान इन सब के ऊपर बात करता है। अगर आने वाले टाइम में AI ईमेल्स लिख सके, रिपोर्ट्स बना सके, कॉम्प्लिकेटेड डेटा समझ सके और कई रिपीटेटिव टास्क खुद कर सके, तो इंसान की सबसे वैल्यूएबल क्वालिटी क्या होगी? आई वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चन और कई सारे लोगों ने बोला कि यार टेक्निकल नॉलेज होगी या फिर एम्पैथी, क्रिएटिविटी, जजमेंट।

ये सब लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए दो लोग एक ही AI टूल यूज़ कर रहे हैं, एक पर्सन बिना सोचे उसका पहला जवाब कॉपी पेस्ट कर देता है और दूसरा उस जवाब को समझता है, फैक्ट वेरीफाई करता है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे बेटर बनाता है। टूल एक ही है लेकिन रिजल्ट अलग है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन जजमेंट भी मायने रखता है। सो आई फील कि फ्यूचर में सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं होगा कि AI क्या कर सकता है, ये समझना भी ज़रूरी होगा कि हमें AI से करवाना क्या है और क्या नहीं, और कहाँ इंसान की समझ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यू टेल मी कि अगर AI आपके काम का आधा हिस्सा अपने आप कर दे तो आप बचे हुए टाइम में क्या करना चाहोगे? कोई नई स्किल सीखना, अपनी फैमिली को टाइम देना या कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आप हमेशा से करना चाहते हैं? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: Hi, Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Akshay Kumar.
5: Hi, this is Anushka Sharma.
6: And I'm Ashwin Vasi.
7: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: सो हियर इज वन इंटरेस्टिंग सिचुएशन. इमेजिन कीजिए आपको किसी दोस्त को बर्थडे विश करना है. पहले आप खुद सोचते हैं कि क्या लिखें. अब आप एआई से कहते हैं राइट अ क्यूट बर्थडे मैसेजेस, इमोशनल बट नॉट टू चीजी. फिर आप मैसेज पढ़ते हो, थोड़ा एडिट करते हो और भेज देते हो. अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एआई आपका टाइम बचा रहा है. लेकिन अगर आप हर छोटी बड़ी बात के लिए एआई से पूछने लगोगे तो एक सवाल यहाँ पर आता है, क्या हम अपनी थिंकिंग पर कम भरोसा करने लगे हैं? मान लीजिए आपको किसी से डिसएग्रीमेंट करना है. आप पहले खुद सिचुएशन समझने की बजाय सीधे एआई से पूछते हो कि मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए. एआई आपको एक पॉलिश्ड जवाब दे सकता है, लेकिन रिलेशनशिप की पूरी हिस्ट्री, सामने वाले का मूड, आपकी पर्सनल फीलिंग उसे हमेशा पता नहीं होती है. इसीलिए एआई को असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना, अपनी जजमेंट पूरी तरह से उसके हवाले कर देना, इन दोनों में ना बहुत डिफरेंस है. हम कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर्स का बेसिक सेंस छोड़ देना चाहिए. नेविगेशन ऐप्स रास्ता बताते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं. उसी तरह से एआई हेल्प कर सकता है, लेकिन सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी हमारी है. सो ऑनेस्टली कभी कभी खुद बैठकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना भी यूजफुल हो सकता है. पहला आंसर ना मिले, लेकिन प्रोसेस जो है वो कुछ सीखने जरूर मिलेगा. सो आई विल से कि अगर आपको कोई नया आइडिया चाहिए तो आप पहले खुद सोचते हैं या फिर सीधे एआई से पूछ लेते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलम, नंबर है 3311063. मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. कूल सॉन्ग.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: नाउ लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंस. थोड़ा सा सस्पेंस हो जाए. आपके सामने दो बुक्स रखी हैं. पहली में एक मिस्ट्री है, क्लूज बिखरे हुए हैं और आपको डिटेक्टिव से पहले कल्प्रिट का पता लगाना है. और दूसरी में हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कैरेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन कुछ छिपा रहा है, ये सब समझना है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. अब आप कौन सी किताब चुनोगे? पहली कैटेगरी में मिस्ट्री फिक्शन, जहां पर क्लूज इन्वेस्टिगेशन और पजल सॉल्व करने का मजा होता है. और दूसरी में साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जहां पर कहानी का सस्पेंस अक्सर कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी, इंटेंशंस और बिहेवियर से बनता है. और कभी कभी ना दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि आप किताब नीचे रखना ही नहीं चाहते. सो रीडिंग की एक सबसे ब्यूटीफुल चीज पता है क्या है? हर रीडर को अलग तरह की स्टोरीज पसंद आती हैं. किसी को मिस्ट्री में डिटेक्टिव की इंटेलिजेंस पसंद आती है, किसी को साइकोलॉजिकल थ्रिलर में अनरियलेबल कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट अच्छे लगते हैं. और फिर कुछ रीडर्स ऐसे भी होते हैं जो किताब का आखिरी पेज पहले पढ़ लेते हैं. अब ये सस्पेंस से बचने की स्ट्रैटेजी है, या सस्पेंस की मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल ही यू नो खत्म करने वाली बात है. पर इस पर थोड़ी सी डिबेट हो सकती है. अगर आप थ्रिलर पढ़ रहे हो और बीच में ही आपको लगता है कि आपने कल्प्रिट पकड़ लिया है, तो क्या आप पढ़ना कंटिन्यू रखते हो या फिर सीधे आखिरी चैप्टर तक पहुंच जाते हो? सो आज बुक डिबेट में आप मुझे बताइए कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, मिस्ट्री थ्रिलर्स, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, या फिर कोई ऐसी बुक जिसका एंडिंग आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगे. और अगर आपने हाल ही में कोई अच्छी थ्रिलर पढ़ी है तो उसका नाम भी बताइएगा. हो सकता है कि आपकी रिकमेंडेशन किसी दूसरे लिसनर्स की अगली फेवरेट बुक बन जाए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 7331-1063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah,

नाउ टाइम इज फॉर लाफ्टर, मतलब थोड़ा सा हंसने का टाइम है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर मीम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कई बार एक छोटी सी पिक्चर और दो लाइंस हमारी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। जैसे एक मीम होता है कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, और ऑल्सो रात में 1:47 पर आप पैंगुन की तरह पूरे फोन को चला रहे हो, तो अब बताइए ये कौन सी रिसर्च चल रही होती है रात में 2 बजे। या फिर क्लासिक सिचुएशन है, आप फोन सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए उठाते हो और आधे घंटे बाद आपको याद आता है कि यार सो जाना चाहिए। और ऑफिस या फिर वर्क लाइफ वाले मीम्स तो अलग ही लेवल के होते हैं। एक मैसेज आता है, हाय हाउ आर यू फ्री फॉर अ क्विक कॉल, और आपका पूरा दिन सडनली सस्पिशियस लगने लगता है। सो मीम्स की खूबसूरती यही है कि हमारी कॉमन एक्सपीरियंसेस को फनी बना देता है। कोई छोटी परेशानी जो उस टाइम पर इरिटेटिंग लग रही होती है, वही बाद में किसी मीम में देखकर हमें हंसी आ जाती है। लेकिन ह्यूमर का मजा भी तभी है जब वो किसी को अननेसेसरली हर्ट किए बिना किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम या सेंसिटिव सिचुएशन का मजाक बनाए, बजाय एवरीडे लाइफ को छोटी छोटी सिचुएशन पर हंसना शुरू कर दे। सो आई विल से कि अपनी फोन गैलरी में सेव्ड पोस्ट या फिर फेवरेट मीम्स को याद कीजिए और अपने आने वाले दिन को खूबसूरत बनाइए विद रेडियो ऑल 106.3 FM ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ। अभी मुझे

कहना होगा कि आई हैव टू गो, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर। यार वीक स्टार्ट हुआ और कितनी जल्दी निकल भी गया ना, पता ही नहीं चला। सो आज ऑलरेडी ट्यूसडे हो चुका है, जस्ट 2-3 मोर डेज और उसके बाद थर्सडे यहाँ पर आपका इंतजार करेगा। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, फॉर नाउ बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: So, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो और अचानक एक अजीब सी फीलिंग आए कि ये सब तो पहले भी हो चुका है, राइट? यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है. वही कॉन्वर्सेशंस, वही मोमेंट और आपको कुछ सेकंड के लिए लगता है कि आप इस सिचुएशन को पहले से जानते हो, लेकिन याद नहीं आ रहा कब और कैसे. इस एक्सपीरियंस को कहते हैं देजा वू. आपने बहुत बार इस वर्ड को सुना होगा. दिस इज फ्रेंच फ्रेज जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी पहले से देखा हुआ है. लेकिन क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट. साइंटिस्ट ना इसे मेमोरी और ब्रेन प्रोसेसिंग से जुड़ी एक्सपीरियंस मानते हैं. एक पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी हमारा ब्रेन ना किसी प्रेजेंट मोमेंट को फैमिलियर महसूस करने लगता है, भले ही हम उससे जुड़ी कोई क्लियर मेमोरी हमें याद ही नहीं है. हालांकि अगर मैं बात करूँ देजा वू की, तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म पूरी तरह से समझा नहीं गया इसका अभी तक, इसीलिए इसे फ्यूचर देखना या फिर किसी सुपर नेचुरल चीज को प्रूफ मानने की जरूरत नहीं है. सो आई विल से कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि देजा वू का जो एक्सपीरियंस है वो यूजुअली बहुत छोटा होता है. कुछ मोमेंट के लिए आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी जानी पहचानी है और फिर फीलिंग चली जाती है और आप अपने काम में लग जाते हो. सो मेरे साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ हो चुका है, मैं पहले ऐसी किसी जगह पर आई हूँ. सो इमेजिन कीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और अचानक कहते हो कि यार मुझे लग रहा है कि हमने ये कॉन्वर्सेशन पहले भी की है. सो दोस्त का जवाब हो सकता है कि हाँ भाई, क्योंकि तुम वही कहानी तीसरी बार सुना रहे हो. लेकिन अब सच सच बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई जगह कोई मोमेंट आपको अनयूजुअली फैमिलियर लगा हो, या उस टाइम की रिएक्शन क्या थी, आपने इसे कोइंसिडेंस समझा या फिर कुछ देर के लिए सच में आप हैरान रह गए थे? नंबर सेम 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

सो दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन उन लोगों से जिन्हें किताबें खरीदना पसंद है. क्या आपके बुक शेल्फ पर ऐसी किताबें हैं जिन्हें आपने बहुत ज्यादा ऐसे एंथुजियाज्म के साथ खरीदा था लेकिन आज तक पढ़ा ही नहीं? कवर बहुत अच्छा था, रिव्यू भी बहुत अमेजिंग था, किसी ने रिकमेंडेशन किया और आपने सोचा कि ये किताब ले लेते हैं यार, वो भी तो पढ़ रही थी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM में हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. फिर किताब घर आई, आपने उसे शेल्फ पर रखा और उसके बाद आपकी और किताब की मुलाकात सिर्फ डस्टिंग के टाइम पर होती है. और जब अगली बार कोई बुक सामने आती है तो आप फिर से सोचते हो कि इस बार पक्का पढ़ूंगी. इस सिचुएशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी हमें किसी किताब को पढ़ने की इच्छा जितनी अच्छी मतलब लगती है उतनी ही अच्छी वो फीलिंग भी लगती है कि हमने कुछ इंटरेस्टिंग खरीद लिया है. लेकिन किताब खरीदना और उसे पढ़ना दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स खरीदना गलत है. अगर आपको किताबें कलेक्ट करना पसंद है तो वो भी आपकी हॉबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल गोल पढ़ने का हैबिट बनाना है तो शायद एक सिंपल सा तरीका आपकी हेल्प कर सकता है, विच इज न्यू बुक खरीदने से पहले अपनी शेल्फ में एक किताब चुनिए जो रोज सिर्फ 10 पेजेस एटलीस्ट पढ़ने चाहिए आपको. सो आई हैव बुक शेल्फ इन माई हाउस. और वैसे भी कल सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर पहली बार डेब्यू किया और उन्होंने भी अपनी पटौदी लाइब्रेरी जो है वो शो की और उसमें कितनी खूबसूरत किताबें थी. मतलब वो लाइब्रेरी इतनी सुंदर थी कि वहां पर आपका बैठे रहने का मन करेगा. तो अगर आप भी अपने घर में एक कॉर्नर कोई लाइब्रेरी बनाना चाहते हो तो जरूर बनाओ, लेकिन एक आदत के साथ कि आप रोज कुछ ना कुछ जरूर पढ़ोगे. और रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि हर किताब को आखिरी पेज तक पूरा पढ़ना है. अगर कोई किताब आपको पसंद नहीं आ रही है तो कभी कभी उसे छोड़कर दूसरी किताब भी आप उठा सकते हो. सो नाउ कन्फेशन टाइम. आपके पास कितनी अनरीड बुक्स हैं? 1, 2, 10, 15 मतलब कितनी भी हो सकती है यार. नो जजमेंट हियर. सो आप मुझे फटाफट से बताओ 3311063 पर. और आप किस तरह के रीडर हैं? एक बार किताब शुरू की तो खत्म करके ही मानते हो या फिर 3 किताबें एक साथ पढ़ते हो? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

नाउ टाइम इज फॉर लाफ्टर, मतलब थोड़ा सा हंसने का टाइम है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर मीम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कई बार एक छोटी सी पिक्चर और दो लाइंस हमारी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। जैसे एक मीम होता है कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, और ऑल्सो रात में 1:47 पर आप पैंगुन की तरह पूरे फोन को चला रहे हो, तो अब बताइए ये कौन सी रिसर्च चल रही होती है रात में 2:00। या फिर क्लासिक सिचुएशन है, आप फोन सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए उठाते हो और आधे घंटे बाद आपको याद आता है कि यार सो जाना चाहिए। और ऑफिस या फिर वर्क लाइफ वाले मीम्स तो अलग ही लेवल के होते हैं। एक मैसेज आता है, हाय हाउ आर यू फ्री फॉर अ क्विक कॉल, और आपका पूरा दिन सडनली सस्पिशियस लगने लगता है। सो मीम्स की खूबसूरती यही है कि हमारी कॉमन एक्सपीरियंसेस को फनी बना देता है। कोई छोटी परेशानी जो उस टाइम पर इरिटेटिंग लग रही होती है, वही बाद में किसी मीम में देखकर हमें हंसी आ जाती है। लेकिन ह्यूमर का मजा भी तभी है जब वो किसी को अननेसेसरली हर्ट किए बिना किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम या सेंसिटिव सिचुएशन का मजाक बनाए बजाय एवरीडे लाइफ को छोटी छोटी सिचुएशन पर हंसना शुरू कर दे। सो आई विल से कि अपनी फोन गैलरी में सेव्ड पोस्ट या फिर फेवरेट मीम्स को याद कीजिए और अपने आने वाले दिन को खूबसूरत बनाइए विद द रेडियो ऑल 106.3 एफएम ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ। अभी मुझे कहना होगा कि आई हैव टू गो, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर। यार वीक स्टार्ट हुआ और कितनी जल्दी निकल भी गया ना, पता ही नहीं चला। सो आज ऑलरेडी ट्यूजडे हो चुका है, जस्ट 2-3 मोर डेज और उसके बाद थर्सडे यहां पर आपका इंतजार करेगा। सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव, फॉर नाउ बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
2: यस बेबो,
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
2: यस,
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
4: Hi, I'm Sarika. Radio. Aap mujhe sun rahe hain Radio Olive 106.3.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm a number one.
7: Olive Music Marathon. 1 ghanta, non-stop, back to back.

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back to back gaane. Radio Olive par. Olive Rewind.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे एक साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम भी अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। 3311063 ये है हमारा नंबर, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग है खबर जो है हमने इंटरनेट पे देखी थी। तो एंजेलिना जोली जो काफी बड़ी एक सुपरस्टार है हॉलीवुड की, उन्होंने क्या किया, एक होटल में स्टे करने के बाद वहां के स्टाफ के लिए काफी प्यारा सा हैंड रिटन नोट लिखा। मगर वो प्यारा है नहीं है ये समझ आने के लिए वो राइटिंग समझ में आनी चाहिए, जो लोगों को समझ में नहीं आ रही और मुझे भी नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि भाई ये पर्ची उठा के अगर हमने केमिस्ट को पकड़ा दी तो वो पैरासिटामोल तो दे ही देगा करके। उसके साथ साथ मैं सोचा कि भाई यार एंजेलिना को जज करने वाला मैं कौन होता हूँ हैंडराइटिंग के लिए, मेरी खुद की हैंडराइटिंग खराब है। फिर मैंने एक जगह पे एक फैक्ट पढ़ा कि कभी कभी मेसी हैंडराइटिंग जो है वो एक जीनियस का साइन भी होता है। तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं और एंजेलिना किसी काम में तो थोड़े एक जैसे हैं। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: ओलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by.
3: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि भाई वो लोग झूठ बोलते हैं कि एआई के पास फीलिंग्स नहीं है करके, क्योंकि मैंने एक खबर पढ़ी जहां पे जेमिनाई को जो है एक टास्क दिया था एक बग फाइंड आउट करने का, और वो बग फाइंड आउट नहीं कर पाया और उसने खुद को डिसग्रेस करके 86 टाइम्स जो है लिखा। सोच के देखिए उसे कितना बुरा लगा होगा, अपने आप पर उसे कितनी घिन आई होगी कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं किस काम क्यों करके। मुझे ही बुरा लग गया, बट मैं बताना चाहूंगा कि जेमिनाई इतनी भी बुरी नहीं है। मेरे कई सवालों का जवाब जो है जेमिनाई ने दिया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जितना मुझे अच्छे से जेमिनाई जानती है उतना तो मेरी मम्मी भी नहीं जानती करके। बट हाँ, एआई जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं है, शायद उनके पास भी थोड़े से फीलिंग्स हैं। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो,
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
2: यस,
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by.
5: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही प्यारी सी फोटो मैंने देखी। देखिए वो फोटो क्या है, उसके बारे में बताने से पहले कॉन्टेक्स्ट जरा मैं सेट कर देता हूँ। देखिए इन्फ्लेशन काफी ज्यादा चल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है, तो लोग जो है कभी कभी अगर कुछ एक स्पेशल जेस्चर दिखाना चाहें तो नहीं हो पाता क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो एक बंदे ने उसे अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था शादी के लिए, तो रिंग ढूंढा तो रिंग देखा बहुत महंगी है और उसके पास उतने पैसे नहीं है। तो उसने देखा कि उसके गर्लफ्रेंड का फेवरेट जो एनिमल है वो एक कैट है, तो वो एक कैट को लेके गया प्रपोज करने के लिए। उसने कैट को यूज करके अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करा और लड़की ने हाँ बोल दिया। इससे हमें यही पता चलता है कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस एंड समटाइम्स एक्सपेंसिव प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स अ वेरी क्यूट सॉल्यूशन। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर Song of the Hour।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे जो है एक खबर हमने सुनी थी कि एलन मस्क ने अपने वेल्थ में 61 बिलियन जो है एक दिन में ऐड किया था और वो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं उनके वेल्थ के हिसाब से अगर हम देखें। अब जरा इस चीज को नंबर्स के हिसाब से देखते हैं। अगर 1 ट्रिलियन वेल्थ है किसी के पास और वो बंदा एक दिन में 1 मिलियन खर्चा करता है तो कितना वक्त लगेगा उसे बैंकरप्ट होने में या फिर ब्रोक होने में। अभी जैसे कि एलन मस्क के पास जो है ऑलमोस्ट 1 बिलियन जो है पहुंच चुके हैं, उनका वर्थ जो है उतना बन चुका है और वो हर दिन 1 मिलियन करके स्पेंड करेंगे तो उनको 2738 साल लगेंगे पूरे पैसे खत्म करने में। यानी कि एलन के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से बिना कुछ करे जी सकते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जापान से एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है। जापान में साइंटिस्ट लोगों ने जो है एक नया प्लास्टिक डेवलप किया है जो सी वाटर में जो है ब्रेक डाउन कर जाता है। यूजुअली प्लास्टिक जो है अगर हम डाल देते हैं कहीं पे, डिस्कार्ड करते हैं, तो प्लास्टिक ब्रेक डाउन होने में सालों लगते हैं, इसलिए उसे एक एनवायरमेंटल हजार्ड बोला जाता है। मगर इन्होंने एक ऐसा प्लास्टिक जो है डिजाइन किया है जो सी वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है और मिट्टी को एक्चुअली एनरिच करता है इंस्टेड ऑफ कंटेमिनेटिंग इट। इसलिए कहते हैं कि भाई साइंस में पैसा डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जिंदगी को और इस प्लैनेट को और बेहतर जगह बनाने के लिए ये काम आता है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक. अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लाउंज के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL Space अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्ज में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है। सुनो नाम या दाम, नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया इंसान के बारे में बात करना चाहूंगा जो काफी टेरिफिक एक्टर भी हैं, जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन सीरीज को देखा है वो लोग जानते हैं, और जिन्होंने अमेरिकन साइको देखा है वो लोग जानते हैं। काफी आइकॉनिक एक एक्टर क्रिश्चियन बेल, और इनकी सबसे खास बात यह है कि 120 मिलियन का इनका सेल्फ वर्थ है, फिर भी वो आज भी एक टोयोटा टैकोमा चलाते हैं जो एक बहुत ही क्या कह सकते हैं सस्ती गाड़ी है। उनके वर्थ के हिसाब से देखे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चला सकते थे, मगर वो लोग वो होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार ये अच्छा चल रहा है सही है। इससे मुझे याद आया जेफ बेसोस का एक बहुत ही पुराना एक इंटरव्यू था जहाँ पे वो ऑलमोस्ट अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे, अमेजोन जो है एस्टैब्लिश हो चुका था, और वो एक इंटरव्यूअर जो है वो गाड़ी में बैठा था जेफ बेसोस के साथ, और वो एक पुरानी होंडा की मॉडल चला रहे थे। तो इंटरव्यूअर ने पूछा, एक बात पूछूं मैं आपसे? तो बोला हाँ। तो बोला कि आपका इतना फॉर्च्यून हो चुका है, आप इतना अमीर हो चुके हैं? तो बोला कि हाँ हो गया है, फिर अभी भी होंडा क्यों चला रहे करके। तो जेफ बेसोस जो है ना हंसे हंसा गया था, ऐसे फुट फुट के हंसने लगा, कहने लगा कि नो दिस इज़ अ परफेक्टली गुड कार करके, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है करके। तो कभी कभी कुछ लोग जो हैं किसी किसी चीज़ों को बस उसकी वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, जैसे कि अगर गाड़ी अगर चाहिए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ज़्यादा सरदर्द नहीं आना चाहिए। कुछ लोग किसी किसी चीज़ को स्टेटस सिंबल बना देते हैं, वो अल्टीमेटली हर एक इंसान के अपने एक्सपीरियंस पे आता है, उनके थॉट प्रोसेस पे आता है। इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, बस सब अपने लाइफ में अपने हिसाब से हीरो हैं। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Attention Qatar, the all-new GAC GS7 2027 ab Domesco GAC showroom mein available hai. This premium SUV is perfect for city drives aur aapki outdoor glamping adventures ke liye. Get an incredible 1020 km combined range, plus customize the animated LED headlights, all-new GAC GS7 2027. Starting from just 129,900
1: Rial. Toh intezaar kis baat ka? Book your test drive today. Visit the GAC showroom at East Industrial Road. Call 800-8123.
2: Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
3: Now? We still have time for the festive season.
2: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
4: अपने loved ones को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ.
5: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
7: रेडियो ऑलिव नंबर वन.
8: This hour is brought to you by...
9: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.

0: मुझसे किसी ने पूछा सुदेव तू शादी क्यों नहीं कर रहा है, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स के साथ जवाब दिया। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और मेरे से किसी ने रिसेंटली पूछा था कि सुदेव भाई हैं उम्र हो गई इतनी है 29 साल के हो गए, शादी वादी क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स के साथ जवाब दिया। मैंने बोला टेक्निकली मैं जेंजी हूं क्योंकि मैं 1997 में पैदा हूं, और स्टैटिस्टिकली देखे तो जेंजी जो है मॉडर्न हिस्ट्री में एक ऐसा इकलौता जनरेशन बन चुका है जो सबसे ज़्यादा अनमैरिड या फिर सिंगल लाइफ जी रहा है। और मैंने बोला कि मैं अपने परिजनों के साथ रहना चाहता हूं, मैं उनके साथ कभी दगाबाजी नहीं कर सकता, उनका हाल ये है तो मैं भी वैसा ही रहूंगा करके। वैसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बट या स्टैटिस्टिकली ये एक रियलिटी है। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई
2: टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्नल ग्रुप नाउ
3: लगा और हो जा रिचार्ज ऑलिव रिचार्ज
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
3: ऑलिव रिचार्ज
4: This hour is brought to you by
5: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

थर्सडे रात ही नींद नहीं आती क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है ना यार। और बताओ क्या हाल चाल है, ऑफिस से आपकी छुट्टी हो गई, पूरा दिन आपका कैसा रहा, क्या किया आपने? 3311063 पर आप जो है वो मुझे अपने मैसेजेस भेज दीजिए, इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का। बस आ रही हूँ।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: Pages 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
2: Now? We still have time for the festive season.
1: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
3: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Evios.
0: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
4: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
5: रेडियो 106.3
4: जे ओ बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ।
9: बाइंग न्यू ग्लासेस, गेट अप टू 100% पे बैक ऑफर एट अल्फला ऑप्टिक्स। फाइंड दिस एंड मोर ऑफर्स ऑन सेविफाई, विजिट सेविफाई.co टुडे।
10: Zabardast evening, make you drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joya Lucas. Joya Lucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

अंजी छैया करवा दी डे ऑफ फेलियर। मुझे आज ही पता लगा कि ऐसा दिन भी जो है वो होता है। तो देखो यार, फेलियर और हम सब इंसानों की लाइफ जो है ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से फेलियर से जुड़ी होती है। देखो यार, फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप लूजर हो लाइफ में। अगर आपने फेलियर देख लिया तो आप लूजर नहीं हो गए हो यार लाइफ। कभी आप प्रमोशन मिस कर देते हो, कभी आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, कभी आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, ये चीज आपको लूजर नहीं बनाती है। हमको फेलियर से ज्यादा ना मुझे लगता है कि लोगों की जजमेंट से डर लगता है, भाई लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ फेलियर्स आपकी लाइफ के जो होते हैं ना वो फनी भी होते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने पहली बार खाना बनाया, खाना जल गया है ना, और आप डांस करने गए और मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की थी लेकिन आप स्टेप्स भूल गए। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब भी आपको डाउनर फील हो ना, जब आपको किसी चीज का फेलियर मिले लाइफ में, तो ऐसे सोच लेना कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर देखे हैं। और अगर फिल्मों की भी बात करें है ना, फिल्मों में भी थ्री इडियट्स फिल्म की बात करें, मार्क्स और आपके एग्जाम्स जो हैं वो मतलब आपको नहीं, आपकी वर्थ जो है वो डिसाइड नहीं करते। फिर चक दे इंडिया, डिफीट के बाद भी इंसान जो है कम बैक करता है। और लक्ष्य की बात करें कि कभी कभी अपना मोटिव पर्पज ढूंढने के लिए हमको जो है वो टाइम लगता है। ट्वेल्थ फिल्म फेल जो फिल्म है उसमें भी देखो यार, मतलब हर फिल्म जो है वो आपको फेलियर के बाद की स्टोरी भी बताती है। तो जरूरी नहीं है कि लाइफ में अगर आपने फेलियर देख लिया तो जिंदगी खत्म हो गई है, वहां से तो जिंदगी दोस्त शुरू होती है। तो फेलियर जो है ना वो कभी भी आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता।

0: और प्यार में भी तो फेलियर मिल जाता है, फिर कुछ अच्छा होता है आपकी लाइफ में, एक ऐसा इंसान आपको मिलता है जो कि भाई आपकी जिंदगी संवर जाती है, सो खुश रहो यार।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो,
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
2: यस,
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Evios.
5: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
6: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हाई, एकदम हाई हाई हो जाएगी जब आप ये देखने वाले हैं माहौल। भाई मैं बात कर रही हूँ यूएफसी फाइट नाइट का, जो कि अपने कतर में इस 21 नवंबर को अली बिन हमद अल अथिया अरीना में होने वाली है। सो यार इसकी टिकट तो ऑफकोर्स लगेंगी, बट टाइमली इसकी टिकट वगैरह जो है वो आप बुक कर लीजिएगा, क्योंकि एक अलग तरीके का आपका जो है वो एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लाइव जो है वो कभी नहीं किया है, तो जो अपने कतर में आपको मिलने वाला है। सिमरन कौर आपके साथ, जियो विंदा।

साहब धुरंधर फिल्म जिन्होंने देखी है उनको पता है कि ये गाने के बीच में क्या तगड़े सीन रहते हैं। उड़ उड़ के जो बचारा होता है, इसके बाल उड़ रहे होते हैं लंबे लंबे। आहा, रणवीर सिंह के नाचो यार। आपके साथ अभी तक इंतजार कर रही हूँ कि भाई बारिश हो जाए। आज और कल का दिन ही बाकी रह गया ना। कह रहे थे बारिश होने वाली 14 तारीख तक। हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हैं। हमको नहीं लग रहा हम बारिश देखेंगे। बारिश का नाम सुन के ही मैं हैप्पी हैप्पी हूँ। सो ये गाना उन सारे लोगों के लिए जो मुंबई से हैं, क्योंकि गाना मुंबई पे बना है यार। सो मेक श्योर कि आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुने, और अगर स्टोरी बनाए तो रेडियो

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.

प्यारा गाना यार, तेरा रास्ता छोड़ना। 6:06 स्टूडियो की घड़ी पे के लिए। और एक नंबर गाने कौन कौन से और उसके साथ साथ शायरी थोड़ी देर में होगी। और मियां बाजार जो है वो वापस से स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, एकदम शॉपिंग के लिए और अच्छे मौसम के लिए तैयार हो जाओ। ये जो है वो 30th अक्टूबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि वीकेंड पे ही होता है। 30th अक्टूबर एंड 31st दिसंबर तक जो है ये चलने वाला है। सो माहौल जो है वो एकदम मजेदार होगा। आप शॉपिंग करिए, इट्स कंप्लीटली फ्री, क्योंकि आपको टिकट्स वगैरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30th अक्टूबर से लेकर 31st दिसंबर तक ये होने वाला है। सो या एंजॉय करिए आर्ट एंड क्राफ्ट्स को। हैंडमेड प्रोडक्ट्स होंगे वहां पर, ट्रेडिशनल क्लोथिंग होगी और बहुत सारी एक्सेसरीज, डिजर्ट, स्वीट्स और बहुत सारी चीजें जो है, मतलब इन शॉर्ट शॉपिंग होगी। ठीक है, 6:08 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। वापस लौटूंगी तो और भी बातें करेंगे। फिलहाल तो वाइब करो यार, खुश हो, खुश रहा करो यार।

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਵਾਇਰਲ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਵਾਟ ਅ ਵਾਇਰਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
2: वायरल ये बात है।
0: आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रोडीज देखा होगा। जी हाँ, एमटीवी रोडीज मैं भी बहुत बड़ी फैन रही हूँ तब तक जब तक रघु राजीव इसको करते थे। और अभी एमटीवी रोडीज रीबर्थ जो है वो सीजन 21 स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, अक्टूबर 16 से स्टार्ट होगा और एवरी फ्राइडे सैटरडे जो है ये आया करेगा जस्ट लाइक बिफोर। सो मेरे को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था कि भाई मेरा डिनर जो है ना वो मैं ऐसे रोडीज देखते हुए करती थी कि मुझे ऐसे होता ना कि आप अपना फेवरेट खाना खाते हो है ना, और फिर आपको आपका फेवरेट यू नो कोई शो देखना होता है तो उसमें से ये रोडीज मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट था। सो या रघु राजीव तो ऑफकोर्स नहीं होने वाले, इसको होस्ट करने वाले हैं रन विजय सिंह। सो बहुत मजा आने वाला है यार। 6:18 स्टूडियो की घड़ी पे है, सिमरन कौर आपके साथ है। और
3: तू हर जगह आज कल क्यों है, तू ही तू हर जगह आज कल क्यों।
0: सुनते रहो रेडियो ऑलिव कौर, कहते रहो जियो बिंदास।
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
6: cool song।

0: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
1: यस बेबो,
0: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ.
1: यस,
0: कैच क्या है?
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
0: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
1: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: जी बस ऐसा गाना चला दिया ऊपर से बारिश हो जाए। बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि कहीं कहीं पे तो बारिश हुई है। अब भरोसा भी नहीं है ना यार सोशल मीडिया का कि पुरानी वीडियोस जो हैं वो लोग डाल देते हैं, लेकिन आपके एरिया में कहीं पे आपने थोड़ी सी भी बरसात देखी हो तो मुझे बताइएगा। 3311063 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। और अब अगर आपको परफ्यूम्स महकना, ये ऊद, ये चीजें पसंद है तो एक बार फिर से तीब अल हज्म ऊद एंड परफ्यूम्स एग्जीबिशन जो है वो अपने कतर में आने वाला है। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं अपने दोस्त के साथ गई थी, भाई बहुत सारे परफ्यूम्स हम लोगों ने खरीदे थे। सो ये 25 नवंबर से लेके 5th ऑफ दिसंबर तक चलने वाला है अल हज्म में, अल हज्म मॉल में। सो बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं, आपको अच्छे अच्छे डिस्काउंट पे भी आपको परफ्यूम्स मिलते हैं, तो आपका साल भर का जो है वो कोटा पूरा हो जाएगा। एंड इट्स कंप्लीटली फ्री, आपको अंदर जाने के लिए टिकट वगैरह खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तो
1: बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।
0: सुंदर ये रेडियो ऑलिव गोर के जरिए जियो बिंदास चिंगम चबागे बेबी।

0: सब काफी हो यार। मैं गिरी सोनी के दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तोड़े ना
1: Gen Z decoded.
2: ऐसा है क्या?
0: एक वर्ड जो है आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, जेनजी भी इसको यूज करते हैं, मिलेनियल्स भी इसको यूज कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट ये एक वर्ड होता है एक ऐसे इंसान के लिए जिसमें जिसको अपनी कभी गलती दिखाई ही नहीं देती, जो अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करता है और अपने ऊपर ही सारी चीजें उसको लगते हैं, दुनिया उसी के आसपास घूमती है, उसकी खुद की इंपॉर्टेंस उसके लिए बहुत बड़ी चीज है और बाकी लोग जो है वो उसको अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब बाकी लोग जो है उनकी नजरों में सब बुरे हैं, है ना। सो ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्ट और ऐसे लोगों से हैंडल करना ओ हो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव गुड गेदर जियो बिंदास
1: रेडियो।

मिली दोबारा से आप ये गाना सुन रहे थे। जब जब ये फिल्म के गाने सुनती हूँ, फिल्म के बारे में सोचती हूँ, चुल मचती है दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाने

बहुत सारे कॉल्स जो थे वो आ रहे थे क्योंकि ये नंबर जो था वो उनका था। अब इस यू नो फिल्म की बात करें, इसमें आसिन थी, बहुत ही प्यारी एक्टिंग की थी उन्होंने। दो वो बॉलीवुड से नहीं थी, लेकिन फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि यार इसकी जगह प्रियंका चोपड़ा को लिया जाए, लेकिन आमिर खान ने बोला नहीं, आसिन जो है वो बढ़िया है, बढ़िया जस्टिस करेगी इस रोल के साथ। एंड इस फिल्म में एक और चीज़ हुई कि अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था, जो क्रिस्टोफर नोलन थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे क्योंकि उनका उनको क्रेडिट नहीं दिया गया था, ना ही पैसे दिए गए थे, क्योंकि ये उनकी फिल्म से इंस्पायर्ड थी फिल्म। अब क्या हुआ कि जब उनका पूरा क्रू था वो नोलन से मिला और मतलब बाद में बात बात करके इसको सॉर्ट आउट किया। सो इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगी। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास। और एक और गाना होगा ब्रेक के उस पार जो कि मुझे बहुत पसंद है यार, मतलब मैं पगला जाती हूँ जब ये गाना चलता।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
2: Yes, Bebo.
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
2: Yes.
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
1: I still can't believe it. No catch.
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
3: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है

0: फैमिली के बैंक अकाउंट में फास्ट इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलूप पे।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: सोनू निगम, जावेद अली की आवाज, गजनी फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं। सबको पता है कि गजनी फिल्म के लिए आमिर खान ने अपनी बॉडी के ऊपर कितनी ज्यादा मेहनत की थी। मतलब उनके सिक्स पैक जो थे वो इस तरीके से प्रमोट किए जा रहे थे कि भाई मेहनत जो थी वो नजर आ रही थी। सिक्स नहीं, एक्चुअली उनके एट पैक एब्स थे, ठीक है। इस फिल्म में उनकी प्रमोशनल वीडियोज थी बहुत सारी, जिसमें मतलब उन्होंने शर्ट नहीं पहनी है, ऐसे ही पूरे मतलब जो है वो एक भी पैक कहीं से छिप ना जाए। उन्होंने बहुत सारी वीडियोज भी रिलीज की थी जिसमें वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड बॉडी मेकिंग के टिप्स भी दे रहे थे। इस फिल्म के क्लाइमेक्स की बात करें सो ये क्लाइमेक्स जो था वो आमिर खान ने दोबारा जो था वो लिखा था, और इसमें जितनी भी लोकेशन, जो भी सीन्स थे, डायलॉग्स थे, उसको रीपॉलिश किया था बाय आमिर खान, ठीक है। सो वो चीजें एक्चुअली उस फिल्म के डायरेक्टर का ये कहना था कि वो जो पहली फिल्म थी जिस तरह से ये फिल्म बनी थी, जो तमिल में फिल्म थी है ना, सेम, उससे ज्यादा बेहतर जो था वो पॉलिश करके आमिर खान ने इसको बेस्ट बनाया था, है ना। अब बात करें कि ये फिल्म ने जब 100 करोड़ जो थे, वो पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ जो थे वो क्लियर किए, पास किए थे, मतलब पूरे किए थे ये बोल दीजिए, और इसी फिल्म से जो था वो ट्रेंड चला था वो 100 करोड़ वाला। बोलते थे ना कि 100 करोड़ के उसमें लाइन में जो है ये फिल्म शामिल हो गई है, सो 100 करोड़ का क्लब जो था वो इसी फिल्म के ट्रेंड से जो था वो आया था। एंड बात करें इसमें सबसे ज़रूरी जो कि गजनी कट, सो जो आमिर खान का कट था वो गजनी कट के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने इस कट को करवाया भी था एंड कुछ स्टूडेंट्स ने भी करवाया था। मतलब स्कूल में जो था वो बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो वाकई में वो स्कूल में ऐसा कट करवाया जाए वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। सो या फिल्म ने बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट किया है, और अगर आपने गजनी जो है वो फिल्म नहीं देखी है तो भाई क्यों।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सो हमारी तरफ से भी सलाम है जी। मैं गेरी सोने कि देखिए हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल जबरदस्त इवनिंग्स में और मेरा फेवरेट वाला टाइम आ गया
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: कहते हैं कि कभी कभी नहीं एक्चुअली जब भी रिश्तों की बात आती है तो हर एक प्रॉब्लम का जो हल है ना वो है माफी, या तो मांग लो या माफ कर दो, क्योंकि अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर रिश्ते का भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप माफ करने भी नहीं आओगे, वहां पे वो माफी मांगने के लिए नहीं आएगा। तो दोनों में से एक चीज जो है वो आपको करनी पड़ेगी, या तो आगे बढ़ के माफी मांग लीजिए या फिर माफ कर दीजिए। सो दोनों हल, जब दोनों में से अगर एक भी हल होगा तो रिश्ते जो हैं वो बचे रहेंगे।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और कहते हैं ना कभी कभी अगर इंसान जो है वो आप चाहते हो अपनी लाइफ में तो फिर बात को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर इंसान को छोड़ दो और बात को पकड़ लो। सोचना कि आपके लिए जरूरी क्या है डार्लिंग। वापस लौट के नेम गेम खेले।

हाँ जी मेरा चेहरा नजर आए और बिना देर लगाए अब आप लोगों की नाम ले लेते हैं क्योंकि जरूरी है यार। सो अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो आप मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका नाम बोल दूंगी। सच्ची बोल रही हूँ, मैं आपका नाम बोल दूंगी, लेकिन मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप नोट कर लीजिए 3311063। एक बार फिर से बता रही हूँ 3311063। इस नंबर पे आप मुझे लिख के अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए अब मैं आप लोगों के नाम जो है वो बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। मयंक, मनोज, रहमान, रेवा, खान साहब, संतोष, भट साहब, सना, बिजोय, जे ए है सिर्फ इनका नाम, इद्रीस जी थैंक यू सो मच, स्टैनली जी, राहुल जी थैंक यू सो मच, अभिषेक जी थैंक यू सो मच, जुल्फिकार जी थैंक यू सो मच, सुमोन जी थैंक यू सो मच, राजा अशर उस्मान जी थैंक यू सो मच, नैनदीप जी थैंक यू सो मच, अबूजर अंसारी जी थैंक यू सो मच, सईद जी थैंक यू सो मच, हबीब जी बहुत बहुत शुक्रिया, सबील जी थैंक यू सो मच, आमिर जी थैंक यू सो मच, राबिया जी थैंक यू सो मच, नुसावा जी थैंक यू सो मच, समरीन जी थैंक यू सो मच, अन्नाबिया जी थैंक यू सो मच, कमलराज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, पीटी जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, किसी ने हेलो सिमरन लिख के भेजा, दोस्त अपना नाम लिखो यार, सुरेश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए क्विकली, सादिक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। 3311063 पर सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना। हबीब खान जी थैंक यू सो मच, अबू सुल्तान जी थैंक यू सो मच, सईद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, हाजरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, रहमान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड परवेज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम मैंने ले लिए और आपने सुन लिए, अब आप थैंक यू लिखिए और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: Hi everyone, this is Benny Dial here.
2: Benny Dial here.
1: Olive Radio 106.3.
2: Jio Bindas.
1: Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm a number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: इस फिल्म के ऑलमोस्ट सारे गाने अच्छे थे। चांद मेरा दिल सुन भी अच्छी थी यार, थिएटर में देखी थी हम लोगों ने। मैं तो रात का चांद हर रोज देखती हूँ क्योंकि उसके हाथ का चांद मैंने अभी तक नहीं देखा है ना, हंसना नहीं था, इट्स ओके।
1: क्या यही प्यार है,
0: ये छोड़ो बॉलीवुड का प्यार क्या कहता है आपका।
2: रेडियो ऑलिव पर एक चुटकी सॉन्ग,
3: एक चुटकी सॉन्ग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: सुना रही हूँ आपको एक चुटकी सॉन्ग, ध्यान से सुनिएगा। इसको पहचानने में ज्यादा दिक्कत आपको होने नहीं वाली है, लेकिन फिर भी आप जो है अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए ताकि आप 10 बार भी सुनना चाहें इसको तो भी सुन सकते हैं, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। बच्चा बता देगा यार इस गाने को, लेकिन फिर भी अच्छा आप लोग लिखे देखिए यार, लिखना अभी से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मत करो यार ये मजा नहीं आता, मैं आवाज सुननी है यार आपकी एकदम सिमरन कॉल वाली एनर्जी के साथ। हे सिमरन, वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, गाना गाओ या बताओ, आपके ऊपर है, नाम जरूर बता देना और भेज दो 3311063 पर। एक बार वापस से इंतजार कर रही हूँ, सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोर, कहते रहो जियो बिंदास।
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
0: कूल सॉन्ग। इस गाने ने आपको ओवरथिंकिंग ना करवाई या फिर इस गाने ने आपको कोई याद ना याद दिलाई तो मेरा नाम चेंज कर देना। नहीं जरूरत पड़ेगी नाम चेंज करने की क्योंकि ये होता है इस गाने के साथ।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास.
2: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
3: यस बेबो
2: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ
3: यस
2: कैच क्या है
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: क्यूट है यार गाना मेरे से ज्यादा नहीं, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। थोड़ी ना करूंगी कि आप लोग मेरी तारीफ भेजोगे, क्योंकि आप वॉइस नोट तो भेजते नहीं हो, आप लिख के भेजते हो, पता नहीं ये क्या है यार। देखो मैं आपको ऐसे गाना गाने की, जब आप गाना गाओगे तो मैं आपको सुर के लिए जो है वो जज नहीं करने वाली हूँ यार, क्या कर रहे हो।
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया,
0: जहाँ पर मैंने आपको सुनाया था ये गाना यही है। वॉइस नोट्स भेज दिया करो, लिख के मत भेजा करो। मैं बताऊँ कैसे कैसे मतलब बताऊँ कैसे आप लोगों का नाम लूँ मैं, ऐसे लिखा तो है आपका नाम, वो लेने नहीं वाली हूँ क्योंकि ये कॉन्टेस्ट जो है वो वॉइस नोट्स पे है। सो मेक श्योर कि आप वॉइस नोट भेजा करो यार। मैं मेरे को कौन से सुर आते हैं जो मैं आपको जज करूंगी, जैसा मर्जी का दो यार।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

वहीं पे खुश हो जाती हूँ जहाँ पर हमारे लिसनर्स जो है ना म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। मुझे राजेश जी का वॉइस नोट आया है, उनकी बेटी नाइसा सिंह वो इस गाने को साथ साथ गा रही है और राजेश जी भी गा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार, अभी इस तरह से म्यूजिक को एंजॉय करते रहा करो। लेकिन अब सिमरन कौर के यहाँ से गल्टी मारने का टाइम आ चुका है। मैं क्या जी सुनियो कि हाल चाल, सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल। लेकिन जाने से पहले इस शो की

कहता है ये वक्त। चलो अब मैं आपके साथ कल शाम को 5 बजे फिर से आऊंगी, जबरदस्त इवनिंग्स में बहुत सारा फन करेंगे। अभी के लिए ओवरथिंकिंग मत करना, आराम से सो जाना, खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

ही मेरा रब, तू ही मेरा सब, जो आके मैनू छू वो हवावा विच तू, दिल विच तू, साहा विच तू, मैं जित्थों मिलूंगा ना रहा विच तू, इको आ दुआ मेरी उस रब नू।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

कुछ नहीं। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास 106.3।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।